अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

कौसल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः

0: श्रेष्ठरे अवधूत रामनामी गजना राज्याय अवधूत श्री सीताराम नाम महाराज की जय।
1: श्री राम लला भगवान की
0: जय।
1: श्री हनुमान जी महाराज की
0: जय।
1: जय श्री राम
0: जय श्री राम
1: जय श्री राम
0: जय श्री राम
1: जय जय श्री राम
0: जय जय श्री राम।
1: नमः।

श्री गोविंद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान अनेक आध्यात्मिक विषयों जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि की व्यापक व्याख्या करते हुए ज्ञान अज्ञान के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। जनार्दन कहते हैं कि सर्वव्यापक सर्वहृदय स्थित ज्योति स्रोत परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञेय है, वह ज्ञान का परम लक्ष्य है। श्री गोविंद के शब्दों में

ऐसे परमात्मा को कुछ लोग ध्यान से, कुछ ज्ञान से, कुछ निष्काम कर्म से, कुछ सतत उपासना से व कुछ महिमा श्रवण से ही जान पाते हैं और अंततः प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं,

0: जाम दीप जल हल पुर देवता देवन किरदारा बार हो माय माई देवन किरदारा बार हो माय जाम दीप जल हल खंड माता देवन के हो दारा बार हो माय कुन देवता के रचय बिहद्रा कौन बिहाय लय जाय हो माय माई नर बदिया के रचय बिहद्रा सोन बिहाय लय जाय हो माय माई सोन बिहाय लय जाय हो।
1: बहुत पुरानी बात है, अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी, नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुमारी ही रह गई। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में, जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
0: इतना लसुन के माइनर बदिया पाँव पै जनिया जो दे हो माय पाँव पै जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
1: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेल खंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है।

0: जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़, फूल और पहाड़। इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ। और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
1: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
2: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
1: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियां हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलते हैं। विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र यानी सोन।
0: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः। मेकलोद्भवाय बृहते सर्व पाप हराय च।
2: ये है आग्नेय पुराण वर्णित सोन महात्म्य का शुभारंभ। सोनभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
1: किंतु इस महाप्रतापी सोन को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक टक भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
3: नीचे लुप्त हो जाता है।
1: इस स्थल पर वर्षों निवास किया है स्वामी गोपाल दास जी ने। उनकी स्मृतियां पुरानी और लगाव गहरा है।
4: वन्य पशुओं का तो वहाँ अगणित सीमा में रहा करते थे। 4 बजे संध्या के समय से तो यहाँ आवागमन ही बंद हो जाता था। उन्हीं की ही चारों तरफ शोर मची रहती थी। इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
2: सोनमुड़ा से कुछ आधुनिक ढंग का रिश्ता है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
5: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर जिले में पेंड्रा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा। पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर दिशा की ओर।
0: ये यात्रा शांति पाती है बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहां सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएँ हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड या रिहंद, घाघर, कनहर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
2: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष शिवद्वार में, गौरी शंकर बरेला में, और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के चंदेल और गहरवार काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला और आगे जाकर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट, सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसी आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है, जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
0: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
1: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधी जिलों में बघेली ही बोली जाती है।

0: सीधी निवासी श्री बद्रीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधे के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का गठन किया गया। ये सन 82 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसेन जहाँ के नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं।

0: वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसे लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है, जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
1: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरिक गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुँच गई।

0: বিরাজা ঢালালে বায়া নারে লগায় কাহাত বাড়া হো দৌ নারায়ণ কাবিদ বর মালিক দিলে হুয়ালি লার কাহাই কি আজ এতনা নৌকায়ে নদী সোন ভদ্র পর বা কুল ও পার খুটিয়াল বা কেসে বরতিয়া উতর চলি গোসাইয়া।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मज्ञ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोल दहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं,

0: कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र जिले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाएं जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयले की खदानें NCL के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा NTPC ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाईं, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना, और कुल मिलाकर इसकी जो स्थापित क्षमता है वो करीब 7000 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 परियोजनाएं यहाँ पे लगाई गई, वो अनपरा और ओबरा।
0: अपने उत्तरार्ध में सोन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, खूब चौड़ा पाट और गरजता हुंकार भरता तेज प्रवाह। वो नद है ना, सो पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखलता से बार बार अपना मार्ग बदलता रहा है और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियां पुराने लोगों के हृदय को अब भी कांपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथार गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रच डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में,
3: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरणवाह, बैल को हमारे बैल को हरणवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है।

0: कान में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है, सोन का ही दूसरा नाम है। हिरण्यवाह बीमारी जो है वो सोन की प्रकृति को उजागर करता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
1: यह सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता।

0: में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुरानी इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी।
1: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेज़ों ने डेहरी के निकट एक आईनिकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो एनिकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने एनिकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के। और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं भोजपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
2: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
0: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
2: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
3: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से देहरी ओंसों से उत्तर और पश्चिम पूर्व वाले लोगों को खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है। धान होता है और गेहूं होता है, नहर आने से फसल ज़्यादा होने लगा है।
0: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
4: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली है थोड़ा बहुत, चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है, बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है मरना है हम लोग का।
0: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री ब्रज किशोर द्विवेदी।
5: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ 3 इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, 4थी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इससे जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं, और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
2: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
0: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
6: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 5.1 मिलियन एकड़ फीट, वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। इसमें ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकड़ फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं और 0.52 मिलियन एकड़ फीट हम एमपीपी को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट की क्षमता के हमारे कुल ये 4 पावर हाउसेस में इसका होने का है।
0: लेकिन बड़ी विकास योजनाएं अपनी भरपूर कीमत भी वसूलती हैं, आशाओं के साथ आशंकाएं भी उपजती हैं। बाणसागर परियोजना की संभावित डूब क्षेत्रों में आने वाले सतना जिले के ग्राम झिन्ना के श्री भैयालाल वैश्य का मन इन्हीं में डूब उतर रहा है।

0: हम ये सोच रहे हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा और हम कहाँ जाएंगे। आज 30 वर्ष हमारी उम्र है, हमारी प्रगति करने वाली उम्र अभी है और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगति कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
1: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू ज़िले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
2: हम लोग को तो लगता है कोई सा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उन सोन की ढाब से हम लोग पैदे जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
3: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
4: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहाँ हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा, यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
1: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
3: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
5: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं, उस प्रभाव के फलस्वरूप पानी का पीएच एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिड हो जाता है और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
1: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
6: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोन नदी में चली जाती है। उस राख के बहने से सोन जो है चौपन से पटना तक एकदम प्रदूषित हो गई है।
3: प्रदूषण की समस्या को आधुनिक उपभोगवादी जीवन दृष्टि का दोष मानते हैं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और पर्यावरण जीव शास्त्री प्रोफेसर J.S. राठौर।
7: ये जो अम्लाई क्षेत्र है, जो मिल वाले हैं, वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे, वो दृष्टि के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
3: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादात्म्य है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
1: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषेय शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावें
3: कि इसके अंचल में जीवन के उल्लास की लय में बंधे पांव थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओज है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: कि विवाह संपन्न हो जाने तक मुनि नारद उन्हीं के साथ रहे। हल उन्होंने ही निकाला।
1: आराम से पुष्प को देख के
2: स्वागत मार्ग पर शीघ्रता से पुष्प बिछाओ। महादेव किसी भी समय अवतरित हो सकते हैं।
1: धन्य भाग है इस हिम प्रदेश के, स्वयं परमेश्वर देवी पार्वती का हाथ मांगने आ रहे हैं।
2: भोजनादि का प्रबंध देख लिया तुमने?
1: हाँ, उधर विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित पंडाल में सब व्यवस्था हो गई है।
3: गण श्रेष्ठ
2: जी, स्वामी हिमवान,
3: मंगलाचरण नृत्य गान का प्रबंध हो गया है?
2: आपकी आज्ञा से सब हो गया है।
4: नारायण नारायण नारायण।
3: अहो भाग्य मेरे जो आप इस अवसर पर विराजे।
4: उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान।
3: मुनि श्रेष्ठ, आपके साथ ये लाल वस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष कौन है? एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में सिंह।
4: हिमवान, अभी आप नृत्य गान की बात कर रहे थे ना? हमारे साथ ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ नटराज आए हैं। अपनी लीलाओं से सबका

0: कोई ज्ञान ही नहीं है।
1: ये जानते हुए भी कि स्वयं देवाधिदेव मेरी पुत्री के पति होने वाले हैं, इसका इतना दुस्साहस?
0: हम हिमराज हैं, इसी कारण शांत हैं। अन्यथा अब तक तुम्हारा सिर धरती पर लौटता हुआ दिखता।
1: हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें इस धृष्टता के लिए क्षमा करते हैं। हम अपनी पुत्री पार्वती का हाथ देंगे तो मात्र महाप्रभु के हाथ में, या यूं कहो कि हमने पार्वती को शिव को दिया।
2: मैं कृतार्थ हुआ माते।
3: ये क्या हुआ? इस नट का रूप कैसे बदलने लगा?
4: अरे हाँ, सुंदर पीतांबर वस्त्र, आभूषण, चार भुजाएं, तर्जनी में सुदर्शन चक्र,
3: वाम में माता लक्ष्मी।
4: अरे ये तो स्वयं भगवान विष्णु है।
3: अरे देखो देखो, इस नटराज का रूप फिर बदल रहा है।
4: चार मुख, साथ में वीणा वादिनी माँ सरस्वती।
3: अरे परम पिता ब्रह्मा को प्रणाम करो। अब व्याघ्र चर्म ओढ़े, हाथ में त्रिशूल पकड़े, त्रिनेत्रधारी कौन है?
4: कौन है?
3: तन पर भभूत, सिर पर जटाएं, गले में नागराज। अरे इनके वाम में तो स्वयं देवी पार्वती खड़ी है।
4: देवाधिदेव प्रभु शिव शंकर के अतिरिक्त ये कोई हो ही नहीं सकते। अरे अरे ये तो लुप्त हो गए।
3: अरे हाँ,
4: ये तो लुप्त हो गए।
3: क्या
1: क्या क्या ये विभत्स कुरूप?
0: अरे मैना तो मूर्छित हो गई।
5: सखी जया, विजया, आओ इन्हें शीघ्र अंदर ले चले।
0: जल्दी ले जाओ, जाओ शीघ्रता से।
6: देवर्षि नारद, ये सब क्या था? हम विस्मित हैं।
7: नारायण नारायण, पर्वतराज हेमवान, आप तो अपनी पैनी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। जिस ऊंचाई पर आप हैं, वहां से आपकी दृष्टि पृथ्वी की हर गतिविधि को तुरंत देख लेती है, परंतु आज वही दृष्टि साक्षात भोलेनाथ को ना पहचान पाई। नारायण नारायण।
6: परंतु उन्हें इस स्वान की क्या आवश्यकता थी?
7: पर्वत श्रेष्ठ हिमान, महाप्रभु के माता पिता होते तो सामाजिक आचार निभाते हुए स्वयं आकर पुत्री पार्वती का हाथ मांगते।
6: परंतु
7: इन अजन्मे परमेश्वर के माता पिता नहीं हैं, वो तो स्वयं ही जगत पिता है। वैसे भी क्या एक जामाता का किसी पिता से आकर उसकी पुत्री मांगना सामाजिक नियमों के अनुकूल होता?
6: मुने नारद, परमेश्वर का तो आदेश मात्र ही हमारे लिए पर्याप्त होता।
7: परंतु प्रभु ने देवी पार्वती को दिए अपने वचन का मान रखा है, स्वयं रूप बदलकर उनका हाथ आपसे मांगा है।
6: मुनि श्रेष्ठ, उन्हें पहचानने में हमसे भूल हुई, हमारी ओर से आप उनसे क्षमा मांगे। उनकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। हम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए आमंत्रित करते हैं।
7: नारायण नारायण।
1: नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अपनी पुष्प सी कोमल बच्ची को कभी उस कुरूप सन्यासी के पल्ले नहीं बांधूंगी।
6: परंतु मैना, हम
1: और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी नाथ, तो मैं विष खा लूंगी।
6: मैना,
1: पार्वती को महासागर में डुबो दूंगी, परंतु शिव से उसका विवाह नहीं करूंगी।
7: देवी मैना, उनमें बुराई क्या है?
1: वे असुंदर तो है ही, साथ में न उनके पास कोई राजोचित सामग्री है, उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य, न ही कोई स्वजन, बंधु बांधव, कुछ भी तो नहीं है। ऐसी भिक्षुक रूपी शिव को मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकती।
7: देवी मैना, आपकी पुत्री पार्वती ने शिव प्राप्ति के लिए गहन तपस्या की है, मन से वो शिव को वर चुकी है। उनकी प्रतिज्ञा है कि वो शिव के अतिरिक्त किसी और को पति स्वीकार नहीं करेंगी। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी पुत्री की तपस्या सार्थक हो?
1: क्या करूं?
7: देखो देवी मैना,

0: आज से एक सप्ताह पश्चात अत्यंत मंगलकारी और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। इस मुहूर्त में आप जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव को सौंपकर निश्चिंत हो जाइए।
1: जैसी आपकी आज्ञा मुनि श्रेष्ठ।
0: जय नारायण नारायण नारायण।
1: और ज्ञानी शौनक जी, शिव पार्वती महाविवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। विश्वकर्मा ने पर्वतराज हिमवान के नगर का स्वरूप ही बदल डाला।
2: वो कैसे महाभाग सूत जी?
1: सबसे पहले तो विश्वकर्मा ने अनेक योजन विस्तार वाला विवाह मंडप बनवाया। कहीं कृत्रिम सिंह तो कहीं सारसों की पंक्तियां और कहीं कृत्रिम गज स्थापित किए। स्थान स्थान पर नृत्य करते स्त्री पुरुषों की मूर्तियां लगी थी। देवताओं और ऋषियों की प्रतिरूपा मूर्तियां भी नगर को सुशोभित कर रही थी।
2: अर्थात विश्वकर्मा ने धरती पर ही स्वर्ग स्थापित कर दिया।
1: हाँ शौनक जी, विवाह का शुभ मुहूर्त आते आते हिमवान का नगर विभूतियों से भर गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी समेत सभी देवता वहां उपस्थित थे। परंतु
2: क्या विप्रवर सूत जी?
1: माता मीना का मन अब भी व्यथित था। वे शिव को जामाता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चारों ओर नृत्य संगीत का वातावरण भी उनके मन में उत्साह नहीं भर पा रहा था।
3: लो, जिस क्षण की चिरकाल से प्रतीक्षा थी वो आ पहुंचा है। कितनी विशाल बारात है प्रभु शिव शंकर की। सहस्त्रों शिवगण नाचते कूदते आ रहे हैं। नारद मुनि भी प्रसन्नता से एक तारा बजा रहे हैं।
4: स्वयं महाप्रभु सुसज्जित वृषभ राज नंदी पर सवार हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में वृषभ ध्वज।
3: हाँ, परम पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और सभी देवता बारात के स्वागत के लिए भवन द्वार पर आ गए हैं।
4: पर्वतराज हिमवान और देवी मीना भी आभूषित देवी पार्वती को ले द्वार पर आ पहुंची।
3: देवी पार्वती तो सौंदर्य की प्रतिमा लग रही हैं।
4: परंतु देवी मीना के भाल पर चिंता की गहन रेखाएं हैं।
5: ये कैसा विकृत दृश्य है। हर्धनग्न शिवगण, भूत, पिशाच इस मंगल अवसर पर भी भांग घोट कर उसका सेवन कर रहे हैं। लोट पोट हो जा रहे हैं। इनके कंठों से कैसी भयानक ध्वनियां निकल रही हैं। नहीं नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता।
3: अरे देवी मैंने ये क्या कर रही है? उन्होंने पूजा की थाली एक और फेंक दी है।
4: ये तो पार्वती जी को ही जोड़ रही हैं।
5: अरे पुत्री पार्वती, ये तूने अपने लिए कैसा वर चुना है। चंदन छोड़कर तूने शरीर पर कीचड़ लगा लिया है। सूर्य को छोड़कर जुगनू पकड़ लिया है। हंस के स्थान पर कौवा पाल लिया है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र जैसे देवताओं को छोड़कर ये बबूतारी योगी चुन लिया है तूने। तूने कुल को कलंकित कर दिया है।
3: नारायण नारायण नारायण। देवी मैना, ये आप क्या कह रही हैं? भगवान शिव का रूप तो अति भव्य है।
5: नहीं नहीं, उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है।
1: भार्य मैना, ये तुम्हारा दृष्टि दोष है और ये सब तुम्हारे स्वप्न का ही परिणाम है।
6: कैसा स्वप्न पर्वतराज हिमवान?
1: परमपिता, देवी मीना ने एक स्वप्न देखा था जिसमें इन्हें शिव जी बहुत ही विकराल रूप में दिखाई दिए थे। तब से महाप्रभु की यही छवि इनके मानस पटल पर अंकित हो गई है।
6: पुत्री मैंने, किसी व्यक्ति को कौन सी वस्तु किस रूप में दिखाई देती है ये उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ चुकी धारणा पर निर्भर करता है। अनेक कोमल पुष्पों के साथ कांटे भी होते हैं। अब ये देखने वाले की मनस्थिति है कि उसे पुष्प दिखते हैं अथवा काटे।
1: और भार्य, ठीक उसी समय पुत्री पार्वती को भी तो स्वप्न आया था। उसे महामहिम दूसरे ही रूप में दिखाई दिए थे।
7: नारायण नारायण, समस्या का समाधान अभी हुआ जाता है। पुत्री पार्वती,
8: आज्ञा गुरुवर।
7: आप इस समय महाप्रभु और उनके साथ आए गणों को स्पष्ट देख पा रही हैं?
8: जी मुनि श्रेष्ठ।
7: कृपया देवाधिदेव के रूप का वर्णन करें।
8: वो सहस्रों सूर्यों से भी अधिक दैदीप्यमान है।
6: देवी मैना, ये है महाप्रभु का तेज ओज।
7: पुत्री पार्वती, देवी मैना को महादेव के सिर पर मात्र जटाओं का एक झुंड दिखता है।
8: मुझे उन जटाओं में से उदित होते चंद्रदेव दिखाई पड़ते हैं।
6: मैंने, ये है प्रलयंकारी शिव का शांत शीतल स्वरूप।
8: परंतु विष्णुदेव।
6: पुत्री पार्वती, महाप्रभु के शरीर को अनेक सर्प घेरे हुए हैं।
8: भगवान विष्णु, ये सभी नाग महादेव का आभूषण है।
6: और प्रभु के शरीर पर मली भभूत।
8: ब्रह्मदेव, इस भभूत का स्पर्श मात्र पाने के लिए हर प्राणी आतुर रहता है।
1: भार्य मेना, अपने नेत्र बंद कर महाप्रभु को उसी रूप में देखने का प्रयास करें जिस रूप में पुत्री पार्वती उन्हें देख रही है।
6: हाँ पुत्री मेना, अपनी पुत्री पार्वती की दृष्टि से देखकर बताइए कि अब आपको महाप्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है।
8: अब तो महादेव सहस्त्रों सूर्यों के तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अति वैभवशाली वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे हैं। वे कितने सुंदर, कितने मनोहर, गौरवर्ण और प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। ऐश्वर्य उनकी चरण धूली बना हुआ है। यक्ष गंधर्व अप्सराएं उनका यशगान कर रहे हैं।
7: नारायण नारायण।
2: देवी मैना, अब आपका क्या विचार है?
8: क्षमा मुने, क्षमा परमपिता, क्षमा विष्णु देवा, और सबसे बड़ी क्षमा देवाधिदेव। मैं मंदबुद्धि आपकी महत्ता नहीं पहचान पाई। मैंने आपकी निंदा करके अक्षम्य अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवाधिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। देव, क्षमा स्वरूप मेरी पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण स्वीकार कीजिए।
9: स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।

0: तो अंततः देवी मीना मान ही गई सूरजी महाराज।
1: हाँ शौनक जी, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक विवाह वेदी की ओर चल पड़े। गंगाचार्य ने विवाह की विधि आरंभ की।
0: आहा, क्या आनंदमय दृश्य रहा होगा, वर्णन करते रहे महाभाग सूत जी।
1: विप्रवर शौनक जी, हिमवान ने पाद्य आदि से वर शिव का पूजन किया तथा उन्हें वस्त्र चंदन आदि से वरण किया, परंतु तभी हिमवान ने एक ऐसा प्रश्न कर डाला जिससे सभी अवाक रह गए। स्वयं भगवान

0: शिव निरुत्तर हो गए।
1: ऐसा क्या प्रश्न था सूत जी?
0: कन्यादान का संकल्प लेकर पर्वतराज ने एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न कर डाला।
2: प्रभु शिव शंकर, कन्यादान से पूर्व आप हमें अपने गोत्र एवं कुल से परिचित करवाएं।
3: नारायण नारायण, पर्वतराज हेमवान, ये आपने क्या प्रश्न कर डाला?
2: महामुने नारद, कन्यादान से पूर्व तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है ताकि ज्ञात हो सके कि कन्या किस कुल और किस गोत्र में जा रही है।
3: आपका प्रश्न समयानुकूल है पर्वतराज। मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, मुनि नारद और सभी देवतागण देवाधिदेव का कुल है। ये हमारे कुल पिता हैं। इस कुल के विषय में आपको कोई संशय हो तो अवश्य पूछें।
4: और हिमवान, अजन्मे की गोत्र कौन सी होती है इसका तो हमें ज्ञान नहीं
2: प्रभु,
4: परंतु ये अवश्य जानते हैं कि ये अजन्मा ही सबकी गोत्र निर्धारित करता है।
3: हिमवान, गोत्र कर्मों से जुड़ी होती है। आज मैं परमपिता ब्रह्मा देवाधिदेव की गोत्र निर्धारित करता है। इनकी गोत्र है क्षमा।
5: ये क्या है? ब्रह्मा जी क्या नाम है? ब्रह्मा जी का क्षमा गोत्र? ब्रह्मा जी की गोत्र क्षमा?
2: क्षमा महाप्रभु, क्षमा। मुझसे ये व्यर्थ प्रश्न पूछने की धृष्टता हो गई। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम परिग्रहणीश्व प्रसीद सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी कन्या पार्वती आपको देता हूं, आप इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। और सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो।
6: देवी पार्वती धन्य हुई।
7: हिमवान और मेना भी धन्य हुए। गिरिजानंदिनी की, गिरिजानंदिनी की, गिरिजानंदिनी की।
8: अरे ये क्या, देवी रति महादेव के चरणों में गिर पड़ी और ऐसे शुभ समय में ऐसा विलाप? अरे
9: ये विलाप, ये तो घोर नट।
10: भगवान शंकर, आपके इस विवाह समारोह में सभी लोग सुखी हुए हैं। सब स्त्रियां अपने पतियों का संग पाकर प्रसन्न चित्त है। एक अकेली मैं ही हूँ जो शोक में डूबी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पति कामदेव को आपने भस्म कर डाला। तब से उनके शरीर की भस्म पल्ले में बांधे हृदय से लगाए घूम रही हूँ। कब आपकी कृपा दृष्टि होगी देवाधिदेव? आज तो परम पिता ने आपकी गोत्र भी निर्धारित कर दी। क्षमा।
3: हे परमेश्वर, इस आनंददायक उत्सव को और सार्थक बना दें। कामदेव का कर्म स्वार्थ रहित था। हम देवताओं के किए का दंड आप देवी रति को न दें। देवी पार्वती की ही भांति आज देवी रति को भी सौभाग्यशालिनी बना दें। आपने देवी रति को वरदान भी दिया था, उसे पूर्ण करने का सुअवसर और क्या हो सकता है देवाधिदेव?
11: जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। देवी रति।
10: आज्ञा देवाधिदेव।
11: कामदेव की भस्म इस अग्नि में डालें।
10: लीजिए प्रभु।
12: त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओ
8: मैं जीवित हो गया।

0: पुनः जीवन मिल गया। हे प्रभु भगवान आप धन्य है, आप क्षमा मूर्ति है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। भगवान धन्य है।
1: लो पुत्री गति, महादेव के क्षमादान स्वरूप अपने पति कामदेव को सशरीर ग्रहण करो।
2: मैं धन्य हुई देवाधिदेव, मैं धन्य हुई।
1: पर्वतराज, देखा आपने, अपनी तपस्या भंग करने वाले कामदेव तक को महाप्रभु ने क्षमा कर दिया, इससे उत्तम कर्म गोत्र क्या हो सकती है।
3: और महाज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार ये मंगलमय अवसर दोहरे उत्सव में परिवर्तित हो गया।
4: महाभाग सूत जी, वास्तव में शिवलीला न्यारी है, एक ओर प्रलयंकारी और दूसरी ओर इतने बड़े क्षमादानी।
3: शौनक जी, क्रोधित होकर विपरीत प्रतिक्रिया तो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु व्यक्ति की महानता निर्धारित होती है क्षमा देने की उसकी क्षमता से, और महादेव की इस क्षमता की कोई सीमा नहीं है।
4: सूत जी, शिव पार्वती मंगल मिलन के इस सुखद प्रसंग को सुनकर मन विभोर उठा है। कुछ समय मैं इन्हीं मोहक मधुर स्मृतियों में खोया रहना चाहता हूँ। सूत जी,
3: जैसी आपकी इच्छा। शौनक जी, शिव महिमा की आगे की कथा कुछ समय पश्चात ही आगे बढ़ाएंगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं, उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञानधामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
2: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुख मारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं, बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी, मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान।
2: हनुमान हनुमान,
1: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी, मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
2: हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।

0: शायद आपके नेत्रों में अश्रु कण।
1: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में क्लानी मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
0: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
1: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
2: नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहिसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह।
0: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा, तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर अग्नि की साक्षी कर उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
3: वानरराज, मेरे भाई महापराक्रमी राम है। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। हर दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
4: देव, आप लोग चिंता न करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखे मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
1: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव, अभी लो प्रभु।
4: ये लीजिए प्रभु,
1: वही है, सीता के ही वस्त्र हैं।
4: प्रभु आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
1: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
4: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
5: ओ दुष्ट मायावी, ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा।
1: सुग्रीव।
4: हाँ भैया।
5: तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम मेघ पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
4: भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
5: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
4: प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा, तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा। मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा

0: किया। चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
1: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वस्व अरिनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरों बिहाला। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
0: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अतः सका सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
1: देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। देखिए, वो दुंधवी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
0: तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
1: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
0: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
1: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
0: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
2: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
3: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया, कहीं भांग तो नहीं खा गया?
2: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
4: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
3: क्या है?
4: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले हो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
3: भीरू प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।
5: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है।
1: मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
0: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो, ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो।
6: अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कभरनाथ मैं मारा।
0: अनुज बधु भगिनी सुतना।

0: सुनु सठ कन्या सम एचारी, इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बने कछु पाप न हुई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
1: स्वामी स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जी सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
0: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
1: नहीं नहीं, कृपानिधान रही मुनिगण, जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जा सुकुन, नित नेति कहीं श्रुति का वही, जित पवन मन गो निरस कर, मुन ध्यान कबूक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहू राखु शरीर ही, अस कबन सठ हट काटी सुर तरु बारी कर ही बबू रही। अब नाथ करि करुणा विलो कहू, देहु जो वर मांगहू, जहि जोनि जन्मु कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। प्रभु, देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है। इसकी बाह पकड़ कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
0: तथास्तु।
2: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी।
3: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
0: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
0: निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त है, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराज पद से सुशोभित करो।
4: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: ताज,
1: आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
2: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
1: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
2: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा।
3: उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकुस पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मोड़ कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर पांव चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर

0: क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव? उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
2: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव। हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
3: हनुमान, हनुमान।
4: आज्ञा महाराज। देवी तारा को साथ

0: हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
2: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
3: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
3: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है। मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
0: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
4: हरखि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए कीस बरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा।
5: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरों, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है। यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो। इसके लिए एक मास की अवधि है, जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
6: भगवान राम की जय, भगवान राम की जय,
7: बानर राज सुग्रीव की
6: जय,
7: बानर राज सुग्रीव की
6: जय,
7: बानर राज सुग्रीव की
6: जय।
5: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचार, रामचंद्र कर काज सवार।
8: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
4: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये बानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन वनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है, हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछा कर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: ये गिद्धराज जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कह बच्चा ने कारा
1: चले आहार बिन मर
2: तब ने मिल भरी उधर आहारा आज दिन विधि एक ही बार
3: अब तो साकार मृत्यु सामने खड़ी हुई है
0: इससे निपट लेंगे सोचने की क्या बात है।
3: वास्तव में किथरा जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। वे परम भाग्यवान है तो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु मुझे समुद्र के तट तक ले चलो मैं जटायु को

सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं

0: गंभीर उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधी दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
2: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
1: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
2: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
1: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
3: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
4: जामवंत, मैं पूछूं तो उचित सिखावन तीन जहु मोय।
2: तुमने हम सबको उबार लिया है ताज, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

0: क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।
1: सुन मैया मोरी।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।